0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा फ्री इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सब कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिङ टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784954 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

राम राम सन्जे 5 बजे थार भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिकराम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। असार महिना ओरिना आप दुई दिन केल बाँकी रहे र दाङमा 72% धान रोपाई सम्पन्न हो रहल। कृषि ज्ञान केन्द्र घोराईका अनुसार देवखोरी क्षेत्रमा अधिकांश खेतमा नै रोपाई ओराकन धान जाम लाग सकलबाट कलेश धान उपत्यकामा देहुर किसान आही वर्षाक भरमा रोपाई गर्ति रहलबाट केन्द्रका अनुसार देवखुरी क्षेत्रमा करिब 90% धान रोपाई सम्पन्न हो सकल बा। तर घोराही तुलसीपुर दंगीशरण शान्तिनगर ओ बबई लगायत उपत्यकाका क्षेत्रमा रोपाईको गति अपेक्षाकृत सुस्त बा। उपत्यका क्षेत्रमा हालसम्म करिब 50% अकेल रोपाई हुलक कृषि ज्ञान केन्द्र दाङक वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शाखा आशा भण्डारीले जानकारी दिएर उहाँका अनुसार सिंचाई सुविधा पुगलक अधिकांश क्षेत्रमा रोपाई सम्पन्न हुइलसके वर्षाको भरमा खेती हुने स्थानमा आही रोपाई हुन बाँकी रहलबा। गत वर्षको तुलनामा यी वर्षको अवस्था उत्साहजनक रहलक भण्डारीको कहिबाटिन। दाङमा कुल 74,336 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहलबा। ऊ मध्ये 37,225 हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती हुन करलक कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क बा। सकुरुन्से धुर घोराई उपमहानगरपालिकामा 8,097 हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती हुन वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत आशा भण्डारीले जानकारी दिएर वस्तक तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 6,795 हेक्टर, दंगीशरण गाउँपालिकामा 3,412 हेक्टर, गढवा गाउँपालिकामा 3,280 हेक्टर, लम्ही नगरपालिकामा 3,250 हेक्टर, राप्ती गाउँपालिकामा 3,245 हेक्टर, राजपुर गाउँपालिकामा 3,103 हेक्टर, शान्तिनगर गाउँपालिकामा 2,750 हेक्टर, बबई गाउँपालिकामा 2,150 हेक्टर ओ बंगलाचुली गाउँपालिकामा 1,143 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन करलबा। यी वर्ष फेर धान खेतीमा आयातित हाइब्रिड बिउको प्रयोग बढ़ी देखिल्बा। यद्यपि पाछक कुछ वर्ष यहाँ किसान कर्मश उन्नत तथा स्थानीय जातक धान होर आकर्षित हुइलागलबाट। वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत भण्डारीका अनुसार जिल्लामा करिब 70% हाइब्रिड, 20% उन्नत ओ 10% स्थानीय जातक धान बिया प्रयोग गर्दिरहलबाट। स्थानीय रैथाने जात मध्ये तिल्की ओ रिमठारो धान आही फे कुछ किसान से संरक्षण करती खेती करती रहलबाट। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नवनियुक्त उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर अजय कुमार मिश्रले पदभार ग्रहणकै रखल। पदभार ग्रहणसँग प्रतिष्ठानका निवर्तमान निमित्त कार्यालय प्रमुख, निर्देशक तथा सह प्राध्यापक डाक्टर सुरेश रसाइली सहित विभिन्न विभागमा चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी से प्राध्यापक डाक्टर मिश्र हन भव्य सामूहिक स्वागत गरल। स्वागत कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा स्वास्थ्य कर्मी कनक प्राध्यापक डाक्टर मिश्रको नेतृत्व, अनुभव ओ दूरदृष्टि चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रतिष्ठान हन लौ उचाइमा पुगिन विश्वास व्यक्त गरल। उपकुलपति मिश्रले प्रतिष्ठानको समग्र विकास, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा तथा अनुसन्धान हन प्राथमिकतामा धैकन सक्कु पक्षीय सहकारी कर्ती अगाडि बढ्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहल। भूमि प्रशासन कार्यालय दाङको श्रेष्ठ अध्यावधि कर्ना कार्य दुई दिन बाँकी बन्द हुन हो रहल। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागद्वारा संचालित पब्लिक एक्सेस मोडेल सुसेवा केन्द्र प्रणालीमा लम्बा समयसे प्राविधिक समस्या आइलक कारण साउन 1 गते सेकेल श्रेष्ठ कायम हुन हो रहल। कार्यालयका अनुसार असार 31 ओ 32 गते श्रेष्ठ अध्यावधि कर्नाकैकन पूर्ण रूपमा स्थगित रहने बा। कार्यालय प्रमुख नरेश कुमार खड्काद्वारा जारी सूचना अनुसार भू सेवा केन्द्र प्रणालीमा निरन्तर ऐतिरलक प्राविधिक गडबडीको कारण असार मसान्तक अन्तिम दुई दिन काम गर निषेक जिना अवस्था सिर्जना हुलक हो। कार्यालयको निर्णय अनुसार आगामी साउन 1 गते सेकेल नियमित रूपमा श्रेष्ठ कायम हुन काम शुरू गर्जिने बा। पाछक समय प्रणालीमा देखिलक समस्यासे सेवा प्रवाह प्रभावित हुलक हो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम रोकबेर सेवाग्राहीमा पर जैन असुविधाप्रति कार्यालयसे क्षमा समेत माग राखल।
गहते खोला बागमारे सड़क खण्ड पाटे ता कुरा का खोल्लोमा निर्माण करगिलक पुल सञ्चालनमा आरहल दाङ तुलसीपुर शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर तीनमा पर्ना पाटेटा कुरा निर्माण हुइलक उक्त पुल मंगलबार से सञ्चालनमा अइलक हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लगानीमा उक्त पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङ मार्फत उक्त पुल निर्माण करगिलक हो। उक्त पुल से तुलसीपुर उपमहानगरपालिका एक ओ शान्तिनगर गाउँपालिकामा तीन नहर जोर्था पुल निर्माण हुने हुइपेर आवाजावतमा धिउर कठिनाई हुइन करल रह पुल बनल पाछ उक्त समस्या हतलक शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत कघाई बाटिन निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसाय हान सम्मान करगिलबा 2081 असार 16 गते मोरङ प्रेमा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रणालीसे कामको पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाइल रह। निर्माण व्यवसाय से यह असारमा काम सम्पन्न गर्नकैकन जिम्मा लिहल रह। सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न गर्लक भर्से निर्माण व्यवसाय हन सम्मान करगिलक तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर एक अध्यक्ष सापकोटासे जानकारी दिएरह। हुइठा आज थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्र कालसन ज्याफे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सक्ने बाटे अखसक खबर मसे समाचार कक्षक सक्खु संग्रहणसँग म शालिक राम चौधरी विदाई टू रिडी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: प्रोडक्टहरु कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: 94 मेगाहर्जमा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुनको अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल। लामो अनुसन्धान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: कुराहीको लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराहीदान फोन नम्बर 082-5161-210। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसञ्चारदेखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोड्ने तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रणाली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोडिङ सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू:
7: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
8: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
9: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
10: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
11: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
12: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
13: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई जाँच। फोन नम्बर 082-5363-218।